0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: So, खुशी खुशी जिंद वारन दी गल इस गीत दे विच प्रोग है। सो जिंदगी च कहिंदे शिकायतां घट करो, शुकराना ज़्यादा करो, जिंदगी अपने आप ही सोहनी लगन लग जाऊगी। असी जदों शिकायतां दे विच ज़्यादा फस जाने हां ते जिंदगी दे मकसद तों हौली हौली दूर होना शुरू हो जाते हैं। प्यार विच सत्कार ते हासा भी होवे ये सब तो बड़ी दौलत होंदी है। अगे एक तर्ज सुनते हैं, बहुत ही प्यारे गीत की तर्ज, उस तो बाद गीत सुनाने हैं।

तू सुन रहे हो कवाली, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। जदों कवाली सुनते हैं तो एकदम उस्ताद जी का नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम लोगों की जबान पर आ जाता, खास जगह बनाई है। एक कवाली विच मुहब्बत की वो डूंघाई नूं नहीं कला बयान करता, इंसान नूं अपने अहंकार अपनियां गलत फहमियां अपने भरमां तों भी उपर उठन की जिहड़ी है एक प्रेरणा दिंदा। इहदे सूफियां दा रंग भी आ, रूहानियत रंग भी आ, दिल दियां उह भावनावां भी हन जिन्हां नूं हर इंसान अपनी जिंदगी दे नाल किसे ना किसे कोने 'च जोड़ के महसूस करता।

0: The difference is the music.
1: SWA 99.9.
2: तो सुनिए अपना मन भाँदा पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का स्वार 99.9 FM तो शाम कुमार दे नाल तुहानूं प्रोग्राम किदां लगता जरूर दस्या करो तुहाडी पसंद भी कोई होवे तो भी जरूर तुसीं दस सकदे हो कोशिश करांगे हर पसंद नूं किस ना किस तरीके नाल पूरा करन दी चलो अगे गीत सुनते हैं सतिंदर सरताज की आवाज़ से बहुत ही प्यारा गीत